आखवखाणा जो सेवै है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्यावै है तुद जी से जन जोग मह सुखवासी से मुक्त भय जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिनका भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी।

तुम्हें झाड़ को अवर न त्याऊं, जो पर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया, चुन चुन सत्र हमारी मारिया। आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करिय हो रक्षा। राख ले हो मोह राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुस्तन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पालमो बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी

फूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक की पीठ पछाने, घट घट की पट पट की जाने। जाबूद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब अकर्ख करत हो कम हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे, आप अपनी बोझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा। ताकौ कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, किह विद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राव कही भूपा। अंडज जेरज से तजकीनी, उत्पुज खान बाहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आज जुगाद स्वरूप स्वयं पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख्य उबार असिख्य संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस्तुय तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित होवे मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह ऐ है। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहिन हर हो, ताके ताप तनिक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शाश्व सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो काहा, दारिद दुष्ट दोख तेरा हा।

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभ्राता, किलबिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तुजा भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई। अड़िल सुने गुंग जो याही, सुरस न पावई, सुने मूढ़ चित लाई चतुरता वई। दुख दर्द पौ निकट न तिन नर की रहै, हो जो या की एक बार चौपई को कहै। चौपई संबत सत्रह सहस पणिजै, अर्ध सहस फुन तीन कहिजै। भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा, तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया। पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब है, बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तो ये बखान्यो। दोहरा

जैसी तू अनेक रोगी आवत है बैद गृह हे, जैसो जैसो रोग तैसो औख दुखवावई, जैसे राज द्वार बिखै आवत है सेवा निमित लोग, जोई जाही जोग सोई टहल बतावई, जैसे दाता पास जन अर्थी अनेक आवै, जोई जोई जाचै दे दे दुख न मिटावई, तैसे गुर चरण शरण चल आवत है अनेक सिख, जैसो जैसो पाओ तैसी कामना।

0: बलराव सपत पाताल बसंतो परथर गुण उचरै सदा गुर संग रहंतो दूरबा परूरो अंगरै गुर नानक जस गायो कब कल सुजस नानक गुर कट कट सहज समायो दूरबा परूरो अंगरै गुर नानक जस गायो कब कल सुजस नानक गुर कट कट सहज समायो।
1: जा को मुन चान तरे फिरत सगल जुग कहबू कै कौ पावे अथम परगास को वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जा को शिव मुन गहनत जात कबलास को जाको जोगी जति सिद्ध साधिक अनेक तप जटा जूट भेख किए फिरत उदास को सो तिन सतगुर

0: के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले
1: के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता
0: के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
1: के सर्वत्र गाजा के सर्वत्र राजा
0: के सर्वत्र सोखा के सर्वत्र पोखा
1: के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण
0: के सर्वत्र

0: सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र
1: के सर्वं कले मैं के परमं फहि मैं
0: के आकलाला में के साहिब कला में
1: उसनल वजू है तमाम मुद्र जू है
0: हमें सुरचला में सरी खुदमदा में
1: गरीबुल सिकस्ते गरीबुल परस्ते
0: बलिंदुल मता ने जमी

0: पर भुक्त प्रभा है सयुक्त सुधा है
1: एवं स्वरूप है अपेद्य अनुप
0: समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है
1: समस्त सलाम है सदैव काम है
0: निर्वास स्वरूप है अगाध है अनूप है
1: अंगाद रूप है अनाद स्वरूप
0: अनंगी अनाम्य त्रिभंगी त्रिकामे
1: गंजे अगाध
0: सुमन सर्पागे सुसर्प अनुरागे
1: भुक्त स्वरूप है अशुज है अशुत
0: के नरकम प्रनाश है पृथुल प्रवास है
1: प्रभा है सदैव सदा
0: के भुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है
1: सदा है विभुक्त प्रवाह है
0: अनुक्त रूप है।

0: sarvam pranam sarvam tranam
1: sarvam karvam sarvam dharmam
0: sarvam yukta sarvam mukta
1: saul shantva prasad namo narkanase sadevam purgas
0: anangam sarupe apangam pabhute
1: parvadam parmate sada sarva satya
0: aga sarupe nirbhad pabhute
1: arangiya namme tripangi dirgam
0: narpangi sarupe sarvangi anupe
1: na putre na satre na mitre
0: na date na mate na jate na pate
1: sadam sarike amito amike
0: sadevam prabhahe adehe ajahe
2: bhagwati chanto hai prasad ke zahar zahur hai ke hazir hazur hai
0: hame sul salam hai samastul kalam hai
2: sahib dimag hai ke usnal charag hai
0: kamal kareem hai ke rajak rahim hai
2: roji dihand hai ke rajak rehend hai
0: karimul kamal hai ke usnal jamal hai
2: gani mulki raj hai garibul niwaj hai
0: hariful shikan hai riyasul fikan hai
2: gang bada sa samastul niwas
0: hai agamul ganim hai rajak rahim hai
2: samastul juba hai ke sahib ki raah hai
0: ke narkam parnas hai bastul niwas hai
2: सर्वुल गवन है हमें सुल रवन
0: तमाम तमीज है समस्तुल अजीज है
2: परंग परमीस है समस्तुल अदीस
0: अजे सुल अलेख है हमें सुल अपेख है
2: जमीनुल जमा है अमी कुली मा है
0: करीमुल कमाल है के जुर्रा जमाल है
2: के अचलंग प्रकाश है के अमितो सुबास है
0: के अजब स्वरूप है के अमितो

0: मन मान्या है जग जान्या है
1: सर्वंकर है सर्वंकर है
0: सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है
1: करुणाकर है विश्वंभर है
0: सर्वेश्वर है जगदेश्वर है
1: ब्रह्मंडस है कलकंडस है
0: परते पर है करुणाकर है
1: जपा जप है तप थप
0: अत्या कृत है अमृत
1: अमृत है अमृत है करुणाकृत है
0: अत्या कृत है तरनीकृत
1: है ईश्वर है परमेश्वर है
0: अत्या कृत है अमृत अमृत
1: है जपा कृत है अमृत अमृत है
0: निर्नायक है खलकायक है
1: विश्वंभर है करुणालय है
0: निपनायक है सर्पायक है
1: पंजन है अर्गंजन
0: रिप्तापन है जप जापन है
1: अकलंकृत है सर्वकृत
0: कर्ता कर है अर्ता हर है
1: परमात्म है सर्वात्म है
0: आत्म बस है जस के जस है।

0: मानसो संजम नेम अनेक बिसेके
1: वेद पुराण कते पुराण जमी जमान सबान के पिता
0: कौन आहार जति जित थार सबै सो विचार हजार के देखे
1: श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिखे
0: शुद्ध सिपा दुरंद दुबा सो साज सना सो साज सना।

0: हमरी करो हाथ देरा छा पूर्ण होए चित की इच्छा
1: तब चंदन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा
0: हमें दुष्ट तुम काबो आप फादे मोए बचाबो
1: सुखी बसे मोरो परिवारा सेवक से।

0: बट जाओ सो तुम दे पाओ।
1: सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है।
0: आप आदे मुझे अबरी है, मरण काल का त्रास नवरी है।
1: पूजो सदा हमारे पच्चा श्री तुझो करियो रक्षा।
0: राख ले मोय रखन हारे साहिब संसाए प्यारे।
1: दीन बन दुष्टन के हंता तुम ओ बुरी चतुर्दश कंता।
0: काल पाए ब्रह्मा भवतरा, काल पाए शिव जू अवतरा।
1: काल पाए प्रभु कृष्ण प्रकाश सा सगल।

0: सवारी सकल प्रजा जिन आप सवारी
1: शिव गण को शिव गुण सुख दियो सतरन को बल मोहबत कियो
0: कट कट के अंतर की जानत पले बरे की पीर पछानत
1: सीते कुंचर असुल्ला सब पर कृपा दस कर फूला
0: संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी
1: एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने
0: जब कर करा कर तारा प्रजा तब दे अपारा।

0: देव को कैस दासिर निरंकार का चिंतन है पर
1: आप अपनी बुद्ध है जेती पनत पेन पेन तो तेती
0: तुमरा लखा न जाए पसारा कैब सजा प्रथम संसारा
1: कै रूप अनूप स्वरूप रंग पेओ राफ गई पुपा
0: अंडर जेर से तस्किनी उद्भुज खान बहोर थी
1: को फूल राजा हुए बैठा को सिमट पर संकिर गैठा
0: सबरी श्री सिखाए चंबवा जुगा स्वरूप से अंबव
1: अमर छा मेरी तुम करो सिख बाण सिख करो
0: दुष्टते उड़वत उड़पाता सगल मलेश करो रणकाता
1: जय सुष्टव सरनी परे तिनके दुष्ट कितवे मरे
0: पुरख जवन पग परे देहारे तिनके तुम संघर्ष सपटारे
1: जो कल को एक बार ते आइए ताके काल निकट नहीं है
0: रचा होए ताहे सब काला दुष्ट रिष्टरे तित काला
1: कृपा दिसन जाए न हरो ताके ताप तनक मोरे हो
0: रिद्ध सिद्ध घर मोस बोई दुष्ट छाछो सके न कोई
1: एक बार जिन तुम्हें सवारा काल फास देता है उबारा
0: जिनर नाम तिहारो का हादार दुष दोख तेरा।

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पातशाही दसवीं तय प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करे निक संतो बार गनी मनगारे।

0: जय कह रहे कह माह समावे
1: जी जन सा कसम के कौन कीमत पावे
0: त्यान सुनित से भक्त सुहावे
1: अगम गोचर साहेबो दूसर लवे न लावे सच पूरे गुरु देसिया नानक सुनावे अगम

0: मेरी अबै बिनती सुन लीजे
1: और न मांगत हो तुम ते का चाहत हो चित में सोई कीजे
0: शासन सुवाती रान पीतर जूझ मरो तो साच पतीजे
1: सत सहाय सदा जग माए कृपा कर श्याम हे वर दीजे
0: स्वैया दे शिवा वर मोहे है शुभ कर्मन ते कबहू ना डरो
1: ना डरो।

पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में कोई न जाने तुमरा ऊँचे ते ऊँचा।

जिन तू नाही विसरिया सो कहो टल गुर सेविए अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसियाए गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसाह कुरसाह चटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांद साह जिस पास बहिठिया सोही है सब नांदा वेसाह सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी राम कली